0: सूरज ने फलक से एक नर्म सा पैगाम भेजा, जिस दिल ने सच्चा इश्क किया हो उसका सफर कभी तन्हा नहीं होता।
1: चांद ने रात 14 hours 43. Good afternoon, Chinette and the family. Hello, Lalita. Having a nice day today.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: तो क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा बस।
1: ठीक है।